0: मेरे पिताजी कहते हैं कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता।
1: हाँ, लेकिन ऐसा ही तू बोल बच्चन करता रहेगा, एड़ी से सर तक दर्द होगा।
2: Yeah, you talking not right, and body pain from toe truck to headlight.